0: कैसे हो?
1: चांदी की डाल पर सोने का मोर, टक झक टक करे नीचे का।
0: Dengarkan Irama Bollywood setiap Sabtu 9.15 minit malam di Radio Malaysia Kedah FM. Kesehu.
2: Kabhi alvida na kehna, kabhi alvida na kehna.
3: Radio Malaysia Kedah FM.